दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है। ताते उपजत है उर दाहू, और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं है, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी? जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी ना करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया, वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाही। तो भाई देखते ही देखते ही स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए कि लाज निभाइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

और यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे। तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल, मन लग गया इस झूठ में अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा। कितना क्षणभंगुर ये देह है,

इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगा कर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहू कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

0: 89.6 FM।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शिवा महादेवा
1: शिवा महादेवा।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: The most powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kutch, Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आकर के, है ना। जैसे ही हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करना है, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली, कुछ देर के लिए भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना, या उल्टा सीधा आपको बोलना, या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात, तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है। गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती है, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं करती थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है इसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ जो मुझे गड़बड़ लगती है, वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा लगा दो बियर लगा, अरे करो बाइक ना लटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे ऐसा नहीं करे हैं, लटाए गए और कई बार खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता यार मैंने क्या गलती की, मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि ये करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोलो। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या है छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार, पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है।
2: My question is that how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death?
1: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे, समझ गए ना? वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना आज, हम खुद भी मर सकते हैं। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं होगा। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आस पास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो। और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आया है, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए, मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल में मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होगे, सक्सेसफुल हो रहे होगे, लेकिन अंदर से यू ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा, आप सही डिसीजन ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजन होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ लो। ये बात पकड़ में आ रही है ना कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब वो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना? खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना, जो हमारे थॉट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है, सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना, तो क्या है एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है, आप बोतल को देख रहे हो बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है, फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है, फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया, तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के, लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल, अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को मतलब कि इस बॉडी को और इस सॉफ्टवेयर को मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए, तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो, तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है, अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे, आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो, फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो, ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना, लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो, आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो बेटर करते हो बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है आपका लेवल बेटर होने लग जाता है, आप 5वें पे जाते हो 10वें पे जाते हो 20वें पे, अब जिंदगी के खेल पे वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है, जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो, नहीं तो आप करोगे क्या, अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया, जब तक जिंदा हो जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर, और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी, क्यों बोलना है मत बोलो, क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में, मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी बीमार हो गए, अभी क्या होगा बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा दुखी हो जाओगे, दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है, बीमार हो गए उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो, क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो, अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं, अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है। लेट इट बी, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए? देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो। बुरा लगेगा सुनने में, पर चिंदी बन जाते हो। समझ ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है, समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है ये, धीरे धीरे समझना है आपको इसको। ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी में, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। एक बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे? कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली। अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। अरे पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकत कर। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया? खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है। यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। रियल लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे जी रहे, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है। सेम लेवल पे, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे। लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना? बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना। लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए? इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं? सोचते ही नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान है, देख सकते हैं तेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना? मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो? ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सब भी लगी हुई है, क्या हो गया? खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा सा कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये गेम है। बी एडवेंचरस। बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ? इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी, चाहे ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है? समझ गए? तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या? मैं बचा, ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया? बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता, कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी, है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हाई सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: ऑफिस ड्रेस।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: या।

ईशाना सुरे के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अच्छी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर इस शो को, जहाँ पर आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। आपके शहर में आज वेदर और ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी लेकर आई हूँ, साथ ही सोशल स्यापा से लेकर क्या कुछ खास इस बारे में भी बात करेंगे। तो बस एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर। ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: We are sorry, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

ईशाना सुरे के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ अब टाइम हो गया है वेदर अपडेट का। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 33 डिग्री जाने वाला है और अगर मिनिमम की बात की जाए 27 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 8 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 83%। इसी के साथ आज रेन यानी कि बारिश की प्रेडिक्शन है, पूरा दिन बारिश होने वाली है। तो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं अपने साथ अम्ब्रेला जरूर लेकर जाइएगा और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: डियर एल्डर्स, नेवर क्लिक ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। कभी अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, OTPs एंड KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। स्टॉप, थिंक एंड वेरीफाई।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे एक्टर की जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ देखा है। और कहते हैं ना कि हर एक्टर की जर्नी एक बड़े बैनर से शुरू नहीं होती। कुछ लोग अपनी मेहनत और टैलेंट से धीरे धीरे ऑडियंस के दिलों में जगह बना लेते हैं। ऐसे ही एक टैलेंटेड एक्टर है सत्यजीत दुबे, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए ना सत्यजीत की, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से आने वाले सत्यजीत दुबे ने थिएटर और एक्टिंग वर्कशॉप के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। इनकी नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने इन्हें ओटीटी और बॉलीवुड दोनों में एक वर्सेटाइल एक्टर की तरह प्रेजेंट किया। अगर इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें ना तो ऑलवेज कभी कभी से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद बाकी की क्रेजी बारात, मुंबई डायरीज, 26/11, थर्सडे, एस्पिरेंस और द एम्पायर, ये कुछ मूवीज है जहाँ पर इन्होंने काम किया है और अपने फैंस का दिल जीता। और इसी के साथ अगर सत्यजीत की बात की जाए ना, बहुत ही वर्सटाइल, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। तो चलिए इन्हें विश करते हैं रेडियो मॉर्निंग विशिंग का वेरी हैप्पी बर्थडे सत्यजीत। आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलते हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
5: Dear elders, never click on links from unknown senders to protect yourself from social engineering attacks. Kabhi apne passwords, bank details, OTPs and KYCs ko mithai ki tarah na baate. Stop, think and verify.

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अगर मैंने भी सुबह सुबह ये बोला ना कि पिज्जा बर्गर फ्राइज है गोलों पे, आई एम डैम श्योर आपके मुंह में ना पानी आ गया होगा ये सुन के ही, बिकॉज आज मैं इसकी बात ही करूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल जंक फूड डे। आई नो हमेशा मैं फिटनेस वाले फंडे लेकर आती हूँ, लेकिन आज दिन बहुत ही खास है। और ये दिन की अगर मैं बात करूँ तो जब हम अपने फेवरेट चीट मील को थोड़ा सा गिल्ट फ्री होकर एंजॉय करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ना एक बैलेंस बना रहता है, एंड बैलेंस है हैप्पी हार्मोन वर्सेस स्ट्रेस। तो भाई आज का दिन उन सभी फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए है जो बहुत ही शिद्दत से अपनी डाइट मेंटेन करके रखे हुए थे और बस अपनी फिटनेस के ऊपर इस तरह से ध्यान दे रहे थे कि बॉइल फूड के आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जबरदस्ती ये सारा बॉइल फूड वगैरह खाएंगे ना, तो आपकी बॉडी एक टाइम पर आकर बस आपसे नफरत करने लगेगी। तो उस नफरत को आज प्यार में बदलने का मौका है आपके पास। आज जंक फूड डे है तो थोड़ा बहुत चीट कर सकते हैं, लेकिन वो भी हेल्थ कि भाई आप लोग सब कुछ जंक ही खाइए। मैं बस ये बोल रही हूँ कि आज आप हल्का फुल्का चीट मील ले सकते हैं। और अगर जंक फूड के पीछे के फन फैक्ट की बात करूँ ना, तो जंक फूड का टेस्ट हमें इसलिए इतना पसंद आता है क्योंकि इसमें सॉल्ट, शुगर और फैट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और इसीलिए कभी कभी एक चिप से पूरा पैकेट खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। सो माय डियर लिसनर्स, लाइफ हो या डाइट, बैलेंस ही सबसे टेस्टी रेसिपी है। तो आज अपनी फेवरेट ट्रीट का मजा लीजिए, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा हेल्दी लाइफस्टाइल किसी एक मील से नहीं, रोज की आदतों से बनता है। तो अपनी आदतें भी अच्छी बनाइए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आज ना मैं एक सवाल के साथ आई हूँ, और सवाल ये नहीं है कि गर्मा गर्म मसाले वाली चाय पी या नहीं। अब सवाल ये है कि अगर मैं अभी आपके सामने चॉकलेट, वनीला, बटरस्कॉच या फिर मैंगो, कोई भी फ्लेवर रख दूँ आइसक्रीम का, तो आप फटाफट से जाके कौन सा फ्लेवर चूज करेंगे? अब आप बोलेंगे, यार अंजलि कभी जंक फूड कभी आइसक्रीम, आखिर कहना क्या चाहती हो? तो भाई कहना ये चाहती हूँ, जुलाई मंथ में है हम लोग, और जुलाई को कहा जाता है नेशनल आइसक्रीम मंथ, यानी कि इस पूरा मंथ ना आप कोई ना कोई फ्लेवर की आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रख के। तो मैं इस मंथ की बात करूँ तो ये मंथ किया जाता है सेलिब्रेट आइसक्रीम को खाने के लिए, और ऑनेस्टली इससे बेटर मंथ और हो भी नहीं सकता जब हम आइसक्रीम की बात करते हैं, बिकॉज गर्मियाँ बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो मूड को चेंज करने के लिए ना आइसक्रीम तो बनती ही है। और जब आइसक्रीम की बात हो ही रही है, तो क्या आपको पता है दुनिया भर में वेनिला आज भी सबसे पॉपुलर आइसक्रीम फ्लेवर में से एक है। और बात की जाए कुल्फी की, तो कुल्फी आज भी इंडिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो देखा, ये कुछ ओजी फ्लेवर्स हैं जो कभी नहीं बदल सकते। जो लोग कहते हैं ना कि बोर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो भाई ये फ्लेवर्स खाकर आप कभी बोर नहीं होंगे, ये एवरग्रीन फ्लेवर्स हैं। यानी कि कुछ खुशियाँ बहुत महंगी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक आइसक्रीम और अपनों का साथ ही काफी होता है। तो आज नेशनल आइसक्रीम मंथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, अपने फेवरेट फ्लेवर्स जरूर इंजॉय कीजिएगा, और हाँ अगर हो सके तो अपने फैमिली या लव्ड वन के साथ जरूर एक आइसक्रीम डेट पर जाइएगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार से ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा कम, फोकस ज्यादा रखो।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

अगर बात की जाए ना टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं हमारी जिंदगी में कितनी सारी चीजों को इजी कर दिया है, लेकिन बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो ये सिर्फ मशीन बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए भी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो मैं जापान का मैं एक ऐसे इंसिडेंट लेकर आई हूँ जहाँ पर जापान के टोक्यो में एक ऐसा कैफे है रोबोट वेटर्स कस्टमर्स को सर्व करते हैं, लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि इन रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं वो लोग जो पैरालिसिस या सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से घर से बाहर जाकर काम नहीं कर पाते। यानी कि ये जो लोग हैं ये लोग घर पर बैठकर ही रोबोट्स के थ्रू कस्टमर से बात करते हैं, ऑर्डर लेते हैं और फूड सर्व करते हैं। यहाँ पर ये कैफे ने ये दिखा दिया कि बॉडी की लिमिटेशन उनके सपनों के बीच नहीं आ सकती। तो चलिए कहानी हो जाए। एक कस्टमर कैफे में आया और उसने रोबोट से पूछा, आज आप कैसे हैं? रोबोट के पीछे बैठे ऑपरेटर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ और आज काम करके बहुत खुश हूँ। उस पर कस्टमर को समझ आया वो सिर्फ कॉफी नहीं किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को भी सपोर्ट कर रहा था। तो देखा आपने, असली टेक्नोलॉजी वो नहीं जो सिर्फ काम आसान करे, असली टेक्नोलॉजी तो वो है जो जिंदगी को बेहतर बना दे। और सोचेगा जरूर कि अगर इनोवेशन का यूज हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हो तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए पैसा ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।
4: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
5: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
6: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: मैं लड़की की इस पंजाब

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: कभी आपने सोचा है कि आपने किसी का दिल तोड़ा और बदले में आप गंजे हो गए? वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो रेडियो महारानी पर अब मैं लेकर आ गई हूँ सोशल स्यापा। वही स्यापा कुछ इस तरह से है, सोशल मीडिया पर एक फनी लाइन काफी वायरल हो रही है और लाइन कुछ इस तरह से, एवरी टाइम अ मैन हर्ट्स अ वुमन द यूनिवर्स स्पीड अप हिज बोल्डनेस। यानी की बात यह है कि जब भी कोई मैन अगर किसी वुमन का दिल दुखाएगा जल्दी से गंजा हो जाएगा। अब इसके पीछे का आखिर सच है क्या? अब यहाँ पर साइंस कहती है कि बोनलेस का कनेक्शन किसी का दिल तोड़ने से नहीं बल्कि जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स और लाइफस्टाइल से होता है। हाँ, स्ट्रेस कभी कभी हेयर फॉल को बढ़ा सकता है, लेकिन ये कोई यूनिवर्स की पनिशमेंट नहीं है कि आपने किसी का दिल तोड़ा और आप गंजे हो गए। तो यहाँ पर ना आज मैं कहानी लेकर आई हूँ, कहानी को जिस तरह से एक दादाजी ने अपने पोते से कहा, बेटा लोगों का दिल मत दुखाना।

पोते ने पूछा, क्यों दादाजी, वरना गंजा हो जाऊंगा। दादाजी ने हंसकर बोला, नहीं, लेकिन किसी का ट्रस्ट टूट गया तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, और शायद वही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये एक फनी सटायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको एक बात जरूर बता दूं, कर्मा बालों से नहीं इंसान के कैरेक्टर से पहचाना जाता है, इसलिए रिस्पेक्ट और काइंडनेस हमेशा फ्री में बांटिए, जितना हो सके उतना बांटिए, कौन सा पैसा खर्च होता है, लेकिन हाँ इससे ना किसी का दिन बन सकता है। तो सोचे कितनी महंगी चीज है जब फ्री में बांट रहे हैं। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
4: हाँ तो अर्ज किया है?
3: अर्ज
4: अभी करते हैं, सुनो।
3: इरशाद,
4: कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
3: वाह,
4: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
4: बस मेरी शायरी सुन लो।
3: फिर
4: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
3: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
4: हेलो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा कम, फोक

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कर कर।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाए चलती है, लेकिन रिलेशनशिप में जब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बन जाते हैं ना, तब दिक्कत हो जाती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। दरअसल मैं आपके लिए एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आई हूँ जिसे कहा जा सकता है सोशल स्यापा। प्राइस की फाइट ने एक सीरियस मोड ले लिया। एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जहां पर सिर्फ फ्राइज खाने पर ना कपल के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि ये सिचुएशन देखते देखते वॉयलेंस तक पहुंच गई। यानी कि ये सिर्फ बातों वाली लड़ाई नहीं थी, ये हाथापाई वाली लड़ाई। एंड देखते देखते जो कपल था उनमें से एक को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। बेसिकली मैंने आपके साथ स्टोरी क्यों शेयर की, ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि छोटी बातों पर गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, सो कम्युनिकेट कीजिए एंड साथ ही ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। वॉयलेंस कभी सोल्यूशन नहीं होता, इस बात का हमेशा ख्याल रखेगा। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। सो प्लीज अपने रिश्ते पे जरूर काम कीजिए। मस्ती मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और इमोशन को रिस्पेक्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों पार्टनर्स के लिए। सो इस चीज का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर को वनबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड एक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सो बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारे ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्रीज समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडी लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ 10:06 हो रहे हैं और इस वक्त बात की जाए टेम्परेचर की तो 27 डिग्री सेल्सियस शहर का तापमान बना हुआ है, जहाँ

बारिश ने मौसम को अच्छा बना दिया। सुबह 4 बजे से बारिश की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अब तक बारिश रिमझिम बारिश हो रही है और ये रिमझिम बारिश ही गर्मी मिटाने का काम करती है। तो अच्छी बात है, पूरे दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और इसी बीच बात की जाए अगर AQI मेंटेन होता नजर आया, 88 पर पहुंचा AQI, शहर की आवाज़ साफ सुथरी होती नजर आई। बाकी चर्चा होती रही सुबह रिकॉर्ड ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए अब फरीदाबाद शहर की, क्या कांवड़ यात्रा, आप सब जानते हैं सावन का महीना और कांवड़ यात्रा की शुरुआत, जहाँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले एक ट्रैफिक एडवाइजरी से रिगार्डिंग, बाकी कुछ प्रॉब्लम से रिगार्डिंग हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है 0129226720। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 0129226720 पर आप कॉल कर सकते हैं। जहाँ अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर, बाकी किसी भी चीज़ को लेकर कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी आती है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ पर पुलिस के द्वारा आपको मदद की जाएगी। और यहाँ इसको लेकर की बैठक भी की गई कि कहाँ कहाँ पर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ट्रैफिक एडवाइजरी क्या होना चाहिए, पूरे नियम भी लागू किए जाने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। आपसे ये कहना चाहूँगी कांवड़ यात्रा के दौरान जो जो भक्त कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं उनसे भी गुजारिश कि आप लोग भी अपना उस हिसाब से प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही जहाँ जो नियम बनाए गए हैं। और बाकी सबसे भी कहा जाएगा कि कांवड़ यात्रियों को रास्ते में रुकावट ना हो, परेशानी ना हो, तो जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी डेली टू डेली ट्रैवल करें। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ अगर बात की जाए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आए दिन साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं। कभी फ्रॉड कॉल के नाम पे, कभी अनवांटेड नंबर से लिंक्स आना, कॉल्स आना, या फिर APK फाइल्स के थ्रू। और आजकल देखा जाए तो हो कुछ यूं रहा है कि सोशल मीडिया पर, अदर प्लेटफॉर्म्स पर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर भी फ्रॉड्स होते नजर आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आप देखेंगे यार, जो लोग बैठे हैं, कहीं जॉब नहीं मिली, चलिए वर्क फ्रॉम होम ही कर लेते हैं। आप अप्लाई करेंगे, आपका कॉल पे इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप हम अवेलेबल कराएंगे, जिसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, कुछ और सॉफ्टवेयर होंगे, आपको डुअल स्क्रीन चाहिए होगा, पूरा सेटअप हम करके देंगे। आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, देन आफ्टर आपके पास बाकी इक्विपमेंट्स, गैजेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बस वही हो जाएगा आपका फ्रॉम। जैसे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाए, कुछ पेमेंट तो आप अपने अकॉर्डिंग कर देंगे, जो भी पेमेंट उनसे कही जाएगी कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में डिपॉजिट करनी। और कई बार लिंक्स के थ्रू पेमेंट ली जाएगी, तो लिंक पर क्लिक करते सार ही आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और वहीं आपके हाथ स्कैम होता नजर आएगा। तो प्लीज ऐसे साइबर फ्रॉडर्स के झांसे में ना आए, और जब भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है, सबसे पहले 1930 साइबर सेल में कॉल करें, जिससे कि आपके अकाउंट से अगर कुछ अमाउंट उसी दौरान डिडक्ट हुआ है तो उस अमाउंट को फ्रीज किया जा सके, जिससे कि आपका पैसा बचाया जा सके। इन साइबर फ्रॉडर से बचने का यही तरीका है। और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करेंगे, चाहे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, पार्क ग्रुप्स में हम लोग जब भी बैठें, ऐसे नए साइबर फ्रॉड्स के बारे में चर्चा जरूर करें, जिससे कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो और इन साइबर फ्रॉडर्स को हराया जा सके। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: दर्द की छुट्टी। यहाँ मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे। पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश। शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों सिनेमा के गलियार से बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। साथ ही आपको बताऊंगा कि नए ट्रेलर टीजर भी होने वाले हैं आउट, जहां होगा कुछ रोमांचक कॉमेडी और थ्रिल से भरपूर कहानियों का आगाज। नए स्टार्स, नई जोड़ियां, नए डायरेक्टर्स, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टोरियां होने वाली हैं आउट, कुछ सिल्वर स्क्रीन पर तो कुछ होंगी प्रीमियर ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। कहानी के साथ जहां चलवा इस वक्त कुछ नए गानों का और कहीं है हॉलीवुड का खुमार। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूं सिनेमा के गलियारे से, लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता कुछ धमाकेदार सिखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं, रहूं मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर रिलीज हुआ, रोमांस मिस्ट्री सस्पेंस फिल्म जो कि हाल फिलहाल सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को इंदर दास ने डायरेक्ट किया है और इसमें आर्य कुमार, नीता शेट्टी, पीहू बिस्वास और सपोर्टिंग कास्ट नजर आती है। बात करें लव मिस्ट्री और सस्पेंस ब्लेंड इस कहानी में है जहां पे एक इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया के नेगेटिव असर से जोड़कर प्रेजेंट किया गया कहानी को। टोन सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा भी लगता है। बात की जाए इस कहानी के बारे में, सपोर्टिंग में संदीप बोस भी नजर आ रहे हैं, साथ ही लोकेश कुमार अग्रवाल, अमन तिवारी और अभिषेक सिंह। कहानी रिलीज की जा चुकी है सिनेमा घरों में, तो बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9 6 5 4 8 9 6 8 9 6 बाकी ऐसी और बहुत चर्चाएं करता रहूंगा। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फॉरएवर। यहाँ बात करते हैं मिसमैच सीजन 4 के बारे में, जहाँ सीन की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और प्रजक्ता कोहली और रोहित सराफ दोनों इस फाइनल चैप्टर को लेकर इमोशनल दिखे। ओटीटी ने कंफर्म किया कि ये सीजन डिंपल और ऋषि की स्टोरी का लास्ट चैप्टर होगा, जो उनके एंगेजमेंट पॉज करने के बाद आगे बढ़ेगा। मिसमैच की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फाइनल जर्नी कंटिन्यू करते नजर आने वाले हैं, और यहाँ पे सीजन 3 के बाद डिंपल और ऋषि ने अपनी एंगेजमेंट को करियर पर फोकस करने के लिए पॉज किया था और सीजन 4 वहीं से आगे बढ़ेगा। देखते हैं कहानी में क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां प्रजक्ता ने डिंपल और उनकी जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा जो बाकी था वो सबके सामने लाने की बात कही। अब देखते हैं क्या कुछ नया इसमें लेकर के आने वाला है अगला सीजन, और कुछ नए स्टार कास्ट, कुछ नए चेहरे, तो कुछ नए किस्से कहानियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले

कहना है हाँ मैं गलत और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। फिल्म मॉर्निंग आरजे मॉर्निंग यहाँ पे अब आपके लिए चर्चा लेकर के आया हूँ सिनेमा के गलियारे की, जहाँ पे दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक जैसे ही रिलीज हुआ तो फैंस ने इस कहानी को अच्छा खासा प्यार दिया। राजकुमार राव फॉर्मर इंडियन कैप्टन के आइकॉनिक लॉर्ड्स बालकनी सेलिब्रेशन वाले मोमेंट को रिक्रिएट करते दिख रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात की जाए तो 14 मई 2027 फाइनल की गई है, और जहां फर्स्ट लुक में राजकुमार राव का किरदार बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। फैंस ने ट्रांसफॉर्मेशन को काफी पसंद किया और सोशल मीडिया पर इसे गांगुली की कैप्टनसी एरा का पावरफुल सिंबल बताया। एक स्पोर्ट्स बायोपिक जो सौरव गांगुली की लाइफ और क्रिकेट जर्नी पर बेस्ड होने वाली है ये कहानी, जहां राजकुमार राव ने इस कहानी के लिए काफी मेहनत करी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इवन सौरव गांगुली की पूरी लाइफ को जानने के लिए, उस पलों को जीना, उनके साथ बैठना, बाकी क्रिकेटर्स के साथ बैठना कि ताकि प्रॉपर तरीके से उसे निभा सके। राजकुमार राव ने क्रिकेट से जुड़े भी काफी तथ्य जाने की, कहां से बॉलिंग बैटिंग बाकी चीजों को जानना कि किसी किरदार को परफॉर्म करना है तो उसमें रम तो जाना पड़ेगा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं एक बढ़िया कहानी के बारे में, रामायण। जी हाँ, जिसका पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाने वाला है। और मेकर्स की अगर बात की जाए, पहले इस कहानी का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन डेट चेंज करके 24 जुलाई फाइनल की। वर्ल्ड वाइड इस कहानी का ट्रेलर जो है 24 जुलाई को रिलीज किया जाने वाला है, जहाँ इस कहानी रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी वाली नितेश तिवारी की एपिक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। ट्रेलर लॉन्च की प्लानिंग की जा चुकी है, जहाँ ट्रेलर लॉन्च के लिए न्यू दिल्ली को वेन्यू रखा गया है और कास्ट क्रू के लिए मेजर मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। जहाँ फिल्म में रणबीर कपूर रामा के किरदार में, तो वहीं यश रावना और साई पल्लवी भी की रोल में होने वाली है। पार्ट वन दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा, और जबकि सेकेंड पार्ट दिवाली 2027 को। ऐसे कहानी की बात की जाए, ट्रेलर की दो वर्जन अप्रूव्ड हैं, एक अराउंड 4 मिनट 15 सेकंड और दूसरा 4 मिनट का है। 15 सेकंड डिफरेंस में अब एग्जैक्टली कौन सा ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, क्या कुछ चेंजेस हैं वर्जन्स के अकॉर्डिंग, बस हाँ फैंस को इस कहानी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि बढ़िया तरीके से बनाया होगा मेकर्स ने इंतज़ार लंबे समय से, क्योंकि कहानी बनने में बहुत लंबा वक्त लगा है और इतनी लंबी कहानी ये सभी पार्ट्स में डिसाइडेड है पहले से कि एक पार्ट अब दिवाली पे, सेकंड पार्ट नेक्स्ट दिवाली, तो इंतजार रहेगा ट्रेलर देन मूवी रिलीजिंग का।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ना चले हैं, ठंड पे गई है, कार चलिए
1: नहीं मैंने जब
2: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम चर्चा करते हैं एक और बढ़िया कहानी के बारे में, जहाँ बात की जाए तो प्रिया मणि को गोलमाल 5 में एक मेन विलन के रूप में कास्ट किया गया, जहाँ वो अजय देवगन और अक्षय कुमार के अगेंस्ट नजर आएंगी। प्रिया मणि द फैमिली मैन और जवान में अपने स्ट्रॉन्ग रोल्स के लिए जानी जाती हैं। इस बार रोहित शेट्टी की कमाली फ्रेंचाइज के एक नेगेटिव रोल निभाती नजर आएंगी और मेकर्स उनके लिए अलग बॉडी लुक प्लान कर रहे हैं। गोलमाल फिल्म्स यूजुअली स्लैपस्टिक कॉमेडी और चाउस के लिए जानी जाती है, इसलिए प्रिया मणि का विलन एंट्री फिल्म को एक नया ट्विस्ट देता नजर आएगा। कास्ट में अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्षद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रवण जोशी जैसे फैमिली ऑफ फेसेस का नाम जुड़ा हुआ है। देखते गोलमाल की पांचवी किस्त क्या धमाल मचाती नजर आएगी, कितना अटेंशन सीख करती नजर आने वाली अपनी अगली किस्त में, जहां कुछ नए चेहरे भी जुड़े हैं और कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस बार गोलमाल का सबके सामने आएगा। बाकी ऐसे भी चर्चा तो होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

0: है झुमका।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
1: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और दोस्तों यहाँ पे अब हम चर्चा करते हैं जहाँ आप सब जानते हैं कि वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का। और आज सिनेमा के कैलेंडर की बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के कैसी एक्ट्रेस जिसने हमेशा अपनी नेचुरल एक्टिंग और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता, हो सकता है उनका नाम हर ब्लॉकबस्टर के पोस्टर पर ना हो लेकिन जिस भी करेक्टर को उन्होंने निभाया उसमें अपनी अलग छाप जरूर छोड़ी। थिएटर, टेलीविजन और फिल्म्स, हर मीडियम में अपनी कला का जलवा दिखाने वाले इस बेहतरीन एक्ट्रेस की अगर बात की जाए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं जिनका नाम है निवेदिता भट्टाचार्य। हैप्पी वाला बर्थडे है आज इनका और इनके जुड़ी कुछ थिएटर से किस्से कहानियाँ तो कुछ फिल्मों से जुड़े बेहतरीन किरदार और बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूं आज। लेकिन सिनेमा के कैलेंडर को आगे बढ़ाने से पहले या नहीं इनके किस्से सुनाने से पहले सुना देता हूं कुछ बेहतरीन से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। और ये ट्रैक आप सभी के लिए।

मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: गाना फ्रॉम द मूवी डॉन और शो चल रहा फिल्मी फ्लेवर। यहाँ सिनेमा के कैलेंडर में अब चर्चा हम आज कर रहे हैं निवेदिता भट्टाचार्य की, जहाँ इनकी एक्टिंग का सफर थिएटर से शुरू हुआ। स्टेज पर काम करते करते उन्होंने एक्टिंग की गहराई को समझा और फिर टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बताई। सबसे बड़ी खासियत उनकी एक्टिंग की यह है कि एफर्टलेस एक्टिंग, जहाँ भी उन्हें लगता है कि यार ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है, हर चीज को समझ के परख के अपने किरदार में उतारती नजर आती हैं। वो हर किरदार इतनी नेचुरली निभाती हैं कि उनका कैरेक्टर बिल्कुल असली लगता है। इसी वजह से डायरेक्टर्स उन्हें स्ट्रांग सपोर्टिंग और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स के लिए पसंद करते रहे हैं। जहाँ निवेदिता के यादगार प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो कुछ यूं है, क्या कहना, फोबिया, सात फेरे और कुंडली भाग्य जैसी कहानियों में थिएटर और टेलीविजन में उनके योगदान को आज तक सराहा जाता है कि उनके करेक्टर्स से कई बार सीरियल्स में, कई बार प्लॉटिंग में, थिएटर्स में पूरे शो को फोकस रखा जाता है। वो वेटेरियन एक्टर के मेनन की वाइफ हैं और दोनों थिएटर बैकग्राउंड से जुड़े रहे। दोनों ही जुड़ी एक्टिंग के प्रति अपने डेडिकेशन के लिए जानी जाती हैं। आज भी उनके करेक्टर्स को जहाँ जहाँ किरदार निभाया याद किया जाता है कि यार उनका निभाया किरदार शायद कोई और निभाता तो उतना इम्पैक्ट ना छोड़ पाता। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: हेल्प। ये है रेडियो महाराज का क्विक वेयर।
1: मीरा, जिनके कंधों पर बचपन, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को, क्योंकि उनका साथ हमारा है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात कर रहे थे निवेदिता भट्टाचार्य के बारे में, जहाँ एक्टर को स्टारडम नहीं मिलता, लेकिन कुछ एक्टर्स अपनी एक्टिंग की वजह से हमेशा याद रखे जाते। निवेदिता उन्हीं कलाकारों में से एक है। चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, वो उसमें अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत देती हैं। इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ऑडियंस के दिल को छू जाती है। निवेदिता की अगर बात की जाए तो जहाँ बहुत कम किरदारों में सबके सामने आती है, लेकिन वो कम किरदार इतनी ज़्यादा मेहनत से निभाती हैं कि वो छोटा सा किरदार या वो कम किरदार भी कितने ही वक्त तक याद रहता है। ऐसी और बहुत सी चर्चा सिनेमा के गलियारों से आप सबके लिए लेकर के आता रहूंगा, लेकिन अब यहाँ से वक्त हो चला है जाने का। कल फिर से मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह, करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM को छट के, और जाते जाते ये खूबसूरत सा ट्रैक है आप सभी के लिए।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

कभी कभी एक सिंपल स्माइल पूरी कंट्री को याद रह जाती है, और यामी गौतम की कहानी वही स्माइल से शुरू होती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल क्रश यामी गौतम की। हिमाचल की एक सीधी सादी लड़की, ना लाउड लॉन्च ना सुपरस्टार सरनेम, बस एक काम फेस, नेचुरल ब्यूटी और कैमरा फ्रेंडली इनोसेंस। शुरुआत हुई टीवी सीरियल से, स्मॉल स्क्रीन स्मॉल रोल्स, लेकिन फिर एक एड आई और पूरा इंडिया सडनली पूछने लगा, ये लड़की है कौन। फेयरनेस क्रीम का वो एड यामी गौतम को घर घर फेमस कर गया। आयरनी देखो, इंडस्ट्री ने उन्हें पहले ब्यूटी के लिए नोटिस किया, लेकिन आगे जाके वही लड़की अपनी एक्टिंग से सबको सरप्राइज करने वाली थी। यामी गौतम पहले स्क्रीन पर प्रिटी लगी, फिर धीरे धीरे पावरफुल लगने लगी, और कैसे हुई उनकी एक परफेक्ट बिगिनिंग, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

मिथु जट नु पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

बॉलीवुड में डेब्यू सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग पहली फिल्म में ही फ्रेश एयर जैसे फील होते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2012, फिल्म आई विक्की डोनर। आयुष्मान खुराना के अपोजिट एक सिंपल बंगाली गर्ल आशिमा रॉय। नो ओवर एक्टिंग, नो ड्रामेटिक हीरोइन एनर्जी, बस नेचुरल परफॉर्मेंस, और ऑडियंस को वही पसंद आया। यामी उस एरा की टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन नहीं लग रही थी, वो रियल लग रही थी। सॉफ्ट वॉइस, सिंपल एक्सप्रेशंस और एक वॉर्म। फिल्म हिट हुई, क्रिटिक्स ने नोटिस किया, सबको लगा बॉलीवुड को एक फ्रेश एक्ट्रेस मिल गई है। उन्होंने एंट्री ग्लैमरस नहीं ली, कंफर्ट से मारी थी। और फिर कैसे मिला उनको प्रिटी फेस का लेबल, करेंगे इसके बारे में आगे भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड की सबसे डेंजरस हैबिट है, और वो है कि अगर एक्ट्रेस खूबसूरत हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बस इसकी खूबसूरती इसका टैलेंट है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम के साथ भी सेम यही हुआ, उन्हें रिपीटेडली ब्यूटीफुल हीरोइन कैटेगरी में डाल दिया गया। फिल्म्स आई, सॉन्ग्स हिट हुए, लेकिन उनके रोल्स ऑफन लिमिटेड रहे, कभी लव इंटरेस्ट, कभी सपोर्टिंग प्रेजेंस। और धीरे धीरे लोग उनकी एक्टिंग की जगह उनकी अपीयरेंस की बात ज़्यादा करने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यामी कभी डेस्परेट नहीं दिखी, ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी, ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। वो क्वाइटली काम करती रही और शायद अंदर ही अंदर वेट कर रही थी एक ऐसे रोल का जहां वो सिर्फ प्रिटी नहीं परफॉर्मर भी प्रूव हो सके। इंडस्ट्री उन्हें ब्यूटीफुल बोलती रही और वो साइलेंटली बेटर एक्ट्रेस बनती रही। और कैसे आया उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: जानी ये स्विच है, बिजली बचाने के लिए इसे ऑफ करना पड़ता है।
1: Killing again. Oh, guilty, guilty. Damn it.

बॉलीवुड में हर एक्टर के करियर में एक मोमेंट आता है जहां ऑडियंस सडनली रियलाइज करती है, ओह, ये तो सीरियसली एक्टिंग कर सकती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं यामी गौतम की। और यामी गौतम के लिए भी ये मोमेंट आया था, और ये मोमेंट था फ्रॉम द मूवी अ थर्सडे। नो ग्लैमरस हीरोइन रोल, नो डांसिंग सॉन्ग्स, बस एक इंटेंस वुमेन होल्डिंग अ सिटी हॉस्टेज। और यामी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म थी, वॉइस, एक्सप्रेशंस, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ अलग था। ऑडियंस शॉक हो गई थी, ये वही यामी गौतम है? सबके मन में यही सवाल था। और वही एक्टर की बिगेस्ट विक्ट्री होती है जब ऑडियंस आपको दोबारा डिस्कवर करे। उसके बाद आर्टिकल 370 जैसी फिल्म्स ने भी प्रूव किया कि यामी सिर्फ स्क्रीन डेकोरेशन नहीं है, वो पूरी की पूरी फिल्म कैरी कर सकती है। उन्होंने लाउड कमबैक नहीं किया, उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया। और इसीलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि यामी गौतम डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्यों है करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज के टाइम में जहां हर सेलिब्रिटी कॉन्स्टेंटली विजिबल रहना चाहता है, यामी गौतम का काम रहना ही उनकी इंडिविजुअलिटी बन गई। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन सकती है। वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं है जो हर वक्त हेडलाइंस में ही रहना चाहती हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती हैं ऑडियंस उन्हें सीरियसली लेती है, और यही पहचान होती है एक अच्छे एक्टर की। ना डेली ड्रामा, ना फेक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, उनकी वाइब ही अलग है। वो अप्रोचेबल लगती हैं, ग्राउंडेड लगती है, और स्क्रीन पर भी वो ओवर परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए उनके इमोशनल सीन्स बिलीवेबल लगते हैं। यामी गौतम का करियर एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है, कभी कभी स्लो ग्रोथ भी पावरफुल होती है। हर एक्टर को ओवरनाइट स्टारडम नहीं मिलता, कुछ लोग ग्रेजुअली ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, और यामी उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं। आज जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो सिर्फ प्रिटी नहीं लगती, कॉन्फिडेंट लगती हैं, कंट्रोल लगती हैं, कंप्लीट एक्ट्रेस लगती हैं। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज कर दिया कि कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन जाता है। तो ये थी कहानी यामी गौतम की। आपको ये पूरी की पूरी कामयाबी की उड़ान की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आप सभी से दोबारा 5 से 8 सोमवार से शुक्रवार शाम को अपने शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 99.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक बात कही गई है ना कहीं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। ये लाइन हम सबने सुनी होगी, पर ऑनेस्टली बताओ कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में इस बात को अप्लाई किया है। कभी ना कभी हम सब एक ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां लाइफ हमें टेस्ट करती है, और उस वक्त हम डिसाइड करते हैं गिव अप करना है या लेवल अप। मैं हूं आरजे गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहां बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, स्टोरीज होती हैं, स्ट्रगल होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट रियल लोग होते हैं। और आज के एपिसोड में कहानी सिर्फ एक सक्सेस की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी स्ट्रगल में हैं, जो सोच रहे हैं क्या मैं भी कर पाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आज आपके पास से सब कुछ छिन जाए, सिर्फ आपकी मेहनत बचे, तो क्या आप फिर से शुरू करेंगे? क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास कभी कुछ भी नहीं था, ना पैसे, ना सपोर्ट, ना लैंग्वेज, सिर्फ एक चीज थी, अंदर का जुनून। और वही जुनून एक दिन उसे ले गया इंडिया के सबसे पॉपुलर फूड ब्रांड में से एक तक। बट वेट, नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप उनका नाम सुनेंगे ना तो कहानी और थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड, और आप सोचिए कि कौन है वो इंसान जो आज हजारों लोगों को रोज इंस्पिरेशन देते हैं। और हाँ, आप गेस भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। रेडियो महारानी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और डीएम में जाके बताइए कि आज मैं किसके बारे में बात

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। अब टाइम आ गया है उस नाम को रिवील करने का, वो नाम जो प्रूफ है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, माइंडसेट मैटर करता है। इनका नाम है प्रेम गणपति। यस, वही प्रेम गणपति डोसा प्लाजा के फाउंडर, आज जिनके आउटलेट इंडिया से लेकर दुबई और न्यूजीलैंड तक हैं। पर एक वक्त था जब मुंबई की सड़कों पर ये इंसान अकेला बिना पैसे बिना लैंग्वेज के खड़ा था। सोचिए, 17 साल का लड़का सपने लेकर आता है मुंबई और जिस इंसान पर ट्रस्ट करके आया वो उसके 200 रुपए लूट कर चला जाता है। न घर लौटने के पैसे, न किसी को फोन करने का ऑप्शन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? शायद वापस चले जाते या फिर लड़ते। प्रेम ने डिसाइड किया, मैं यहीं रहूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। बट कैसे, कहां से स्टार्ट किया, क्या इन्होंने कभी गिव अप का सोचा, इस सब के बारे में बात होगी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।
2: इतनी सी

कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां से वापस आना ऑप्शन होता है, पर रुक कर लड़ना चॉइस होती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूं गीत। अब तक मैंने आपको बताया है कैसे प्रेम गणपति मुंबई पहुंचे और कैसे एक झटके में उनसे सब कुछ छिन गया। अब जरा इमेजिन करिए, एक 17 साल का लड़का जिसे ना शहर की भाषा आती है, ना कोई पहचान है, ना पॉकेट में पैसे हैं, और उसी शहर में उसे डिसाइड करना है भागना है या बनना है। प्रेम जी का बचपन किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा नहीं था, बल्कि वो रियलिटी थी जिसे हम सब में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में 7 भाई बहनों के बीच एक बच्चा जिसे जल्दी समझ आ गया था घर चलाना है तो खुद को रोकना पड़ेगा। 10th के बाद पढ़ाई छूट गई क्योंकि ड्रीम से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी थी। चेन्नई में छोटी मोटी जॉब्स 250 रुपए महीने, और वो भी खुद के लिए नहीं घर भेज दिए जाते थे। क्या आपने भी कभी अपने सपनों को फैमिली के लिए पॉज किया है? अब यहाँ बढ़ते हैं मुंबई में और फिर वही उनकी जिंदगी, पर उसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कहानी का। महीम की एक बेकरी, बर्तन धोने की जॉब, 150 रुपए महीना, लेकिन वहाँ से इनकी एक चीज बदल गई थी, माइंडसेट। प्रेम जी ने सिचुएशन को पनिशमेंट नहीं माना, उन्होंने इसे ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। दिन में काम, रात में वहीं सोना और धीरे धीरे ऑब्जर्व करना कैसे चलता है किचन, कैसे मैनेज होते हैं कस्टमर्स और कैसे बनता है फूड बिजनेस। और इसी बीच एक चीज क्वाइटली ग्रो हो रही थी, डोसा बनाने का उनका शौक। कभी कभी हमारे पैशन हमें बचा लेते हैं जब दुनिया हमें तोड़ रही होती है। 2 साल तक छोटी छोटी जॉब, सेविंग, ऑब्जर्विंग, लर्निंग, और फिर 1992 में इन्होंने डिसाइड किया अब अपना कुछ शुरू करना है। कुछ बड़ा प्लान नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, बस थे कुछ बर्तन, एक चूल्हा और एक विश्वास। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास से बिजनेस चल जाता है? जब इन्होंने पहली बार अपना ठेला लगाया तो क्या लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया, या फिर शुरू हुई इनकी असली स्ट्रगल? मैं बताऊंगी इस कहानी को, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास कापे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

डीनू जेम्स की आवाज में गाना और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। स्टार्टअप शुरू करना आसान है, उसे सर्वाइव कराना असली खेल है। 1992 वशी स्टेशन के बाहर एक छोटा सा ठेला, इडली डोसा और एक सपना, प्रेम गणपति ने शुरुआत कर दी थी। पर यहाँ से स्टोरी आसान नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली गेम शुरू हुआ। इन्होंने अपने दो भाइयों को बुलाया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अकेले जितना कर सकता हूँ साथ में उससे ज्यादा कर सकता हूँ। लेसन फॉर यू, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो टीम सिर्फ लोग नहीं होते, एनर्जी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। दिन भर काम, कस्टमर्स को बुलाना, क्वालिटी मेंटेन करना, और फिर भी गारंटी नहीं कि आज प्रॉफिट होगा या लॉस। लेकिन प्रेम जी ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने अपने स्टॉल को डिफरेंट बनाया। जहां बाकी लोग कैजुअल थे वो क्लीन थे, बाकी लोग लुंगी में थे वो पैंट शर्ट में थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डोसा नहीं बेच रहे थे, एक्सपीरियंस बेच रहे थे। और यहीं से क्राउड आने लगा, इनकम बढ़ने लगी, प्रॉफिट 20,000 मंथ तक। अब लगता है सब सही जा रहा है, पर लाइफ को ना यार ट्विस्ट देना पसंद है। स्पेशली वहीं से जहां आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, वहीं लाइफ हमें नीचे धकेलना शुरू कर देती है। म्युनिसिपल ऑफिसर्स, ठेला जब्त, फाइन भरो, फिर स्टार्ट करो, फिर जब्त, फिर फाइन। इमेजिन करो, हर बार जब आप मोमेंटम पकड़ते हो तो कोई आकर रीसेट कर देता है। तो आपसे एक और सवाल है फिर से, क्या आप ये प्रेशर हैंडल कर पाते? कई लोग यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम जी ने क्या किया? इन्होंने सिस्टम को फाइट नहीं किया, इन्होंने खुद को अपग्रेड किया। इन्होंने डिसाइड किया ठेला नहीं रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन रेस्टोरेंट खोलना मतलब बड़ा रिस्क। क्या वो रेडी थे? क्या उनके पास पैसे थे? या फिर ये डिसीजन उन्हें और नीचे ले गया? ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
1: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सक्सेस सीधी लाइन में नहीं मिलती, वो जिगजैग होती है। वेलकम बैक बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत। 1997 रुपए थे 50,000, एक छोटा सा स्पेस और नाम डोसा प्लाजा। प्रेम गणपति अब नेक्स्ट लेवल पर आ चुके थे, कस्टमर्स बढ़ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स आने लगे थे, नेटवर्क बढ़ने लगा था और यहीं से एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। दोस्तों ने इन्हें सिखाया इंटरनेट। अब सोचो, एक इंसान जो कभी लैंग्वेज स्ट्रगल कर रहा था, अब इंटरनेट से रेसिपी सीख रहा है। यही डिफरेंस है लर्निंग माइंडसेट में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, डोसा को ट्विस्ट देना, फ्यूजन बनाना, चाइनीज प्लस इंडियन इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी, अमेरिकन चॉपसी डोसा, सेजवान डोसा, पनीर चिली डोसा। लोगों को कुछ नया मिला और बिजनेस बढ़ने लगा। 2002 तक 100 प्लस वेराइटीज, टर्नओवर लाखों में पर मंथ। लेकिन हर सक्सेस के बीच एक फेलियर छुपा होता है। अब इन्होंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया। अब दो रास्ते थे, छोड़ दो या सीख लो। इन्होंने क्या किया, उसी लॉस को आइडिया बना दिया, और यही एंटरप्रेन्योर्स को अलग बनाता है। फिर आया बिगेस्ट रिस्क, मॉल में आउटलेट, 3 लाख इन्वेस्ट, उधार लेकर डर नहीं लगा होगा, पर रिजल्ट, फर्स्ट मंथ 6 लाख टर्नओवर। और यहीं से शुरू हुआ स्केल, फ्रेंचाइजी मॉडल, इंडिया, न्यूजीलैंड, दुबई, फ्रॉम स्ट्रीट टू ग्लोबल। लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि असली सवाल ये है कि प्रेम जी और आगे कहां पहुंचे, और आपसे भी सवाल है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो आगे ना सिर्फ कंक्लूजन नहीं होगा, एक पुश भी होगा आपके लिए, डेफिनेटली। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

सक्सेस स्टोरी किसी ना किसी दिन एक छोटे से डिसीजन से शुरू होती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूं आपके साथ गीत, और आज आपने सुनी कहानी प्रेम गणपति जी की। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अभी स्ट्रगल में है, जो अभी डाउट में है, जो हर रात ये सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा। प्रेम जी के पास क्या था? पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था, कनेक्शंस नहीं थे, हंगर, कंसिस्टेंसी और एक डिसीजन, हार नहीं माननी है। और अब मैं आपसे सीधा बात करती हूँ, अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं माइक के उस साइड, क्या आप भी कुछ करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई आइडिया है जो बस दिमाग में घूम रहा है, या आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो पर डर रहे हो नेक्स्ट स्टेप लेने से? तो आप ये सुनिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, ना प्रेम जी के लिए आया था ना आपके लिए आएगा। स्टार्ट करना पड़ता है फियर के साथ, डाउट के साथ, इम्परफेक्ट होकर भी। और हाँ, ये शो सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए नहीं है, ये बल्कि आपके लिए है। मैं चाहती हूँ आप में से हर वो इंसान जो कुछ करना चाहता है हमें मैसेज करें, अपनी स्टोरी बताएं और अपना आइडिया भी शेयर करें, अपना स्ट्रगल भी, क्योंकि हो सकता है बिजनेस अनप्लग्ड पर कहानी प्रेम जी की नहीं आपकी हो। और जाने से पहले बस एक लाइन, अगर शुरुआत छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड भी छोटा होगा। ड्रीम करो, स्टार्ट करो, गिरना भी अलाउड है, बस रुकना अलाउड नहीं है। मैं हूँ गीत, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल स्टोरी के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप बिलीविंग, और ये याद रखिए, मन के जीते जीत।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या कभी ऐसा हुआ है कोई खुशबू आपको अचानक सालों पुरानी यादों में ले जाए, जैसे दादी का संदूक या किसी पुरानी महफिल की हल्की सी महक, और उस खुशबू का नाम है अतर। वो कहा है कि खुशबू का सफर भी अजीब होता है, कभी यादों से मिलाता है, कभी दिल को करीब लाता है। एक बूंद अतर की क्या गिरी, पूरा जमाना महक उठा। 89.6 FM पर मैं हूँ आर्शेंचली आपके साथ, और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ हम बात करते हैं कल्चर की उन कहानियों की जो वक्त के साथ और भी महक उठती हैं। और आज की कहानी है अत्र की। तो चलिए आइए जानते हैं कि अत्र की कहानी कहाँ से शुरू हुई। जरा सोच कर देखिए कि जब मॉडर्न परफ्यूम्स का कोई नामोनिशान नहीं था, तब लोग फूलों की नेचुरल खुशबू को संभाल कर रखना चाहते थे। और हिस्ट्री बताती है कि अत्र बनाने की कला इंडिया और मिडल ईस्ट में 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इंडिया में इसका सबसे मशहूर घर बना कन्नौज, जिसे आज भी परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो कहा है कि फूल मुरझा जाते हैं वक्त के साथ, पर अत्र की खुशबू वक्त से भी आगे निकल जाती है। और इसी के साथ जानेंगे वापस आकर अत्र से जुड़ी कहानी। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर गरबा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो हर घर को महका देती है, अत्र। अगर अत्र की बात करें तो अत्र को इत्र भी कहा जाता है। अत्र का असली गोल्डन एरा आया मुगल पीरियड में। तो आइए चलिए जानते हैं मुगल दरबार और अत्र का क्या कनेक्शन है। बात करें अगर इतिहास की तो अत्र का असली गोल्डन एरा आया मुगल पीरियड में। अगर हिस्ट्री की माने तो नूरजहां को अत्र से बहुत लगाव था। कहते हैं कि जब एक दिन गुलाब के फूल पानी में उबाले जा रहे थे तो पानी के ऊपर खुशबू वाला ऑयल लेयर जमा और वहीं से बना गुलाब का अत्र। तब से मुगल महफिलों में अत्र सिर्फ परफ्यूम नहीं, रॉयल्टी की पहचान बन गया। जब बात कर रहे हैं अत्र की तो आइए चलिए जानते हैं आखिर कैसे बनता है ये अत्र। ये अत्र बनाने का प्रोसेस भी बेहद कमाल का होता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक टेक्निक को जिसे कहा जाता है देखभप का, यानी कि प्योरिफिकेशन। इसे बनाने के प्रोसेस में हमेशा कॉपर के बड़े बर्तन में फूल पानी और सैंडलवुड ऑयल मिलाकर स्लो फायर पर प्योरिफिकेशन किया जाता है। इस प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस लगभग 10 से 15 दिन तक चलाया जाता है, तब जाकर कहीं मिलता है एक छोटी सी बॉटल अत्र। जब बात कर रहे हैं प्रोसेस की तो आइए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से अत्र बनाए जाते हैं। इंडिया में कई तरह के अत्र बनते हैं, जैसे गुलाब का अत्र, मोगरा अत्र, केवड़ा अत्र और खुस का अत्र, और सबसे इंटरेस्टिंग मिट्टी का अत्र। हाँ, मिट्टी, यानी मिट्टी की खुशबू भी बॉटल में बंद हो जाती है। जब बात कर ही रहे हैं इत्र की तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर मिट्टी की खुशबू वाला अत्र कैसे महकता है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

89.6 FM पर मैं हूँ आर्जेंटली आपके साथ और आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं इत्र की, यानी कि अत्र। अब अत्र का प्रोसेस तो जान लिया बनेगा, तो चलिए आइए जानते हैं मिट्टी वाला अत्र कैसे महकता है। मिट्टी के अत्र की बात करें तो जब बरसात की पहली बूंद जमीन पर गिरती है तो जो खुशबू आती है ना, उसे कहते हैं पेट्रिकॉर, और कन्नौज के क्राफ्ट्समैन उसी खुशबू को अत्र में कैप्चर कर लेते हैं। सोच कर जरूर देखिए बारिश की महक एक बॉटल में, और वो कहा है कि बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी को छू जाती है, उसी पल की खुशबू अत्र बनकर दुनिया में फैल जाती है। अब बात कर रहे हैं अत्र की, तो आइए चलिए जानते हैं इसका सफर। कभी जो अत्र सिर्फ इंडिया और मिडल ईस्ट तक सीमित था, आज वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका है। बात करें लग्जरी परफ्यूम्स ब्रांड भी आज नेचुरल अत्र ऑयल्स को यूज कर रहे हैं, यानी एक पुरानी इंडियन ट्रेडिशन अब ग्लोबल ट्रेंड बन चुकी है। अत्र से बहुत कुछ जुड़ा है, अत्र के साथ जुड़ा है कल्चर और रिचुअल्स। इंडिया में अत्र का यूज सिर्फ परफ्यूम्स के लिए नहीं होता, कई जगह रिलीजियस रिचुअल्स, महफिल और फेस्टिवल्स में भी अत्र लगाया जाता है। बात करें टेंपल में भी अत्र की खुशबू महफिल को और सुकून भरा बना देती है। अत्र की सफर की बात तो किया, वापस आकर जानेंगे मॉडर्न परफ्यूम्स वर्सेस अत्र। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कल्चर कारवां सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजी अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं अत्र की। अब बात कर रहे हैं अत्र की तो आइए चलिए जानते हैं मॉडर्न परफ्यूम्स वर्सेस अत्र की लड़ाई। आज के परफ्यूम्स में अल्कोहल और केमिकल्स होते हैं, लेकिन अगर बात करें अत्र की तो 100% नेचुरल ऑयल से बनता है, तभी तो इसकी फ्रेग्रेंस डीप और लॉन्ग लास्टिंग होती है और शायद इसीलिए अत्र की एक बूंद भी काफी होती है। अत्र की बात करें और खुशबू की बात ना हो, खुशबू जो याद बन जाती है, सच कहें तो अत्र से फ्रेग्रेंस नहीं है, वो यादों की महफिल है। एक खुशबू जो कभी दादी के संदूक से आती थी, कभी शादी की महफिल से। वो कहा है कि खुशबू का क्या है, हवा के साथ चल पड़ती है, पर अत्र की एक बूंद सदियों तक दिल में बस जाती है। और इसी के साथ आज हमने बात की कल्चर कारवां में अत्र की। जाना अत्र की खुशबू का राज, जाना इससे बनने का प्रोसेस और जाना इसका सफर। और आप सुन रहे हैं कल्चर कारवां, जहां हम ढूंढ कर लाते हैं भारत की छोटी चीजों में छुपी बड़ी कहानियां। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई खुशबू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: टेम्परेचर भले ही 30 डिग्री हो बाहर का, बट इट्स स्टिल फीलिंग एज इफ इट्स 37 डिग्री सेल्सियस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। शाम हो गई है, दिन भर मौसम अच्छा रहा, दोपहर में थोड़ी सी धूप आ गई, बट अभी भी ठीक है मौसम। कई कई जगह पर छींटे पड़ रहे हैं, कभी ड्रिजलिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। और अभी मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा शो शुरू हो रहा है, तो गाना चलाऊंगा एक और फिर वापस आकर बात करते हैं। तो गाने का नाम है अनस्टॉपेबल, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

दिल्ली NCR में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस चीज का येलो अलर्ट है, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड आज का मौसम थोड़ा सा ऑसम है, मानते हो कि नहीं। लाइक वो कल मैं बात कर रहा था चाय पकोड़े वाला मौसम, हाँ सुबह से ही था चाय पकोड़े वाला मौसम। और आज तो वैसे भी मंगलवार है, काफ़ी सारे लोग आज फास्ट पर भी होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है मुझे, क्योंकि देखो फास्ट में ना भूख लगती है और फिर शाम को वो लोग जब व्रत खोलेंगे फिर उसके बाद वो कुछ भी खा सकते हैं, बट नहीं समोसे नहीं खा पाएंगे वो लोग। तो हम लोग तो खा सकते हैं, अभी समोसे एक्चुअली मेरा फास्ट नहीं है। एंड अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि दिल्ली NCR में येलो अलर्ट है, साथ ही साथ इंडियन वर्क कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आपके ऑफिस में भी ऐसा कुछ होता है, लाइक वर्क कल्चर खराब है? क्या आपके ऑफिस में चापलूसी की जाती है? करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो मेरा एक नंबर है 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, वो ये कि एक इंडियन इंजीनियर ने AI टूल की मदद से 25 लाख रुपए कमा दिए। कैसे करा ये कारनामा, करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और अगर फरीदाबाद में बारिश की वजह से आप लोग कहीं पर भी फंसे हैं या फिर कहीं पर भी आपको वाटर लॉगिंग दिख रही है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं सब कंसर्न डिपार्टमेंट को भी ट्राई करूँ कॉन्टैक्ट करने की, और साथ ही साथ मैं बाकी पब्लिक को बता दूँ कि हाँ यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो आप लोग यहाँ से मत जाइए। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चला रहा हूँ। उन्हीं में से इमरान हाशमी की मूवी का ये गाना सुनिए, इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में खासकर बोल दिया गया है कि येलो अलर्ट जारी हो गया है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एल नीनो इफेक्ट की वजह से ये जो बारिश है इतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो बोला गया था कि आज 21 तारीख को सुबह से बहुत तेज़ वाली बारिश आएगी। वैसे तो रात को 2:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक बहुत तेज़ बारिश आई थी, मुझे कैसे पता, नींद खुल गई थी मेरी, बाहर आवाज़ आई, बिजली चमकी थी। और ऐसा ही आने वाले कुछ दिनों के लिए बोला गया है मौसम विभाग द्वारा, यानी कि आज रात से लेके कल रात तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। तो दिल्ली एनसीआर वालों, जो भी मुझे सुन रहा है, फरीदाबाद वालों, आप लोगों के लिए खास कर ये बात है कि 21 और 22 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट है, जिसमें भारी बारिश हो सकती है और गरज भी सकते हैं, बादल चमक भी सकते हैं बादल, और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। देखो, सबसे पहली चीज़ है लेट मत निकलना घर से। अगर ऑफिस टाइम पे पहुँचना होता है ना, तो जल्दी निकलिए घर से, क्योंकि ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, यानी कि दिल्ली मेट्रो यूज़ कर लीजिए और साथ ही साथ आप बसेस यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे, सब लोग अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे, तो हर जगह बस जाम ही जाम मिलेगा। और फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग की भी तो समस्या है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपने मन में चीज़ रखनी है। और साथ ही साथ बता दूँ आपको, टेम्परेचर ज़्यादा गिरावट नहीं दिखेगी आपको, मैक्सिमम 30 डिग्री या फिर मैं मान सकता हूँ 28 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा, बट उससे कम नहीं होगा। आज तो उमस थी, बट हम लोग अब प्रे करेंगे कि कल के दिन उमस ना हो, कल के दिन बारिश पूरे दिन चल जाए तो अच्छा ही है। मतलब वो छोटी छोटी वाली बारिश की बूंदें होती है ना, वो अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को बारिश पसंद है या नहीं। नंबर है जी 9654896896। वापस आकर वाटर लॉगिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जल भराव काफ़ी सारी जगह पे हो रहा है।

0: इंतजारी नहीं है।
1: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
3: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

फरीदाबाद में अभी काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। नहीं नहीं, पानी आ नहीं रहा है, आसमान से तो बरस रहा है, जमा भी हुआ है गलियों में, बट आ नहीं रहा है पानी नल से सप्लाई में। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और अभी मैं खासकर वाटर लॉगिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, नालों की सफाई करी जा रही है। आज ही दोपहर में मैंने देखा था मथुरा रोड पे सेक्टर 31 के पास वो जो सीवर सकर मशीन होती है ना, सुपर सकर कहते हैं या फिर सीवर सकर कहते हैं, जो भी कहते हैं उस मशीन को, जो बड़ा सा टैंकर होता है और एक पाइप डाला जाता है नीचे, तो उससे सफाई करी जा रही थी और वहाँ पर पानी जो जमा था वो तुरंत गायब भी हो गया। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट उसी समय मेरी नज़र पड़ी एक और नाले पे, नाला नहीं कहूँगा मैं उसको, कहूँगा ड्रेन, जहाँ

जल भराव जब होता है तो फिर उसके बाद काफ़ी बार हमें गड्ढे नहीं नज़र आते, काफ़ी बार हमें गटर नहीं नज़र आते। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे मौसम में ध्यान से गाड़ी चलाइए। और हाँ, प्लीज़ एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये है कि गाड़ी स्लो स्पीड पर ही चलाएँ ताकि किसी और के ऊपर वो छींटे ना पड़ जाएँ जो आपकी गाड़ी से निकल के जाएंगे। तो प्लीज़ गाड़ी से आराम से चलाइए और पानी भी किसी के ऊपर मत उछालिए। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस अगर बात करते हैं आज के मौसम की, बहुत अच्छा हो रहा है ना मौसम। चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है आपका? मेरा तो बहुत कर रहा है। तो चलिए, चाय पकौड़े मैं खिला तो नहीं सकता बट हाँ, गाने ज़रूर चला सकता हूँ। तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। वापस अगर करते हैं और भी बातें इस मौसम के बारे में।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इश्क तेरा तड़पाता है, ना रात को सोया जाता है, खोया रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। इश्क तेरा तड़पा ये गाना था, ओरिजिनल वाला, पुराने वाला। स्वागत है ऐसी गाने के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। और बारिश का मौसम हो और ऐसी बातें, ऐसे गाने ना हो, कैसे मजा आएगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो बारिश का मौसम है ठीक है, उसमें ना चाय, पकौड़े, समोसे, जलेबी, रबड़ी और भी दो चार चीज़ें ऐड कर लो, मतलब मज़ा सही आ जाता है ऐसे मौसम में। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी ऐसा कुछ किया जाए कि हाँ अपने पास ना कुछ मंगाया जाए। और देखो बारिश के मौसम में नहीं खाया तो कब खाओगे, घेवर का मौसम है, घेवर खाइए अभी इस टाइम, समोसे खाइए, बट हाँ इन मॉडरेशन। यानी कि गौरव ने बोला था हम खा कराएंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको सब कुछ इन मॉडरेशन खाना है। यानी कि अगर समोसे खाने का मन है तो एक समोसा लीजिए, अपने दोस्त को बिठाइए, आधा आधा खा लीजिए, और अगर ज़्यादा है तो एक एक खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीजिए साथ में और एन्जॉय कीजिए इस मौसम को। तो आज के मौसम की अगर बात करें तो सुबह से धूप तो नहीं थी, बादल थे, रात को बारिश हुई, सुबह 4:30 बजे बंद हो गई बारिश, फिर उसके बाद सुबह सुबह बार बार चल रही थी, बार बार बार बार वो ड्रिजलिंग हो रही थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी थी। और सुबह की अगर मैं 10:30 या 10 बजे की बात करूँ तो उस टाइम जो भी ये बारिश हो रही थी उसने तो सच में दिल खुश कर दिया था। मगर फिर दोपहर में 2 बजे के बाद जो ये धूप आई, इसकी वजह से उमस फिर से लौट आई थी। और वैसे बता दूँ आपको, मौसम विभाग का ये कहना है कि कल शाम तक फिर से ये बारिश चलती रहेगी। तो बारिश होगी तो फिर ट्रैफिक जाम भी होगा, ट्रैफिक जाम होगा तो वाटर लॉगिंग भी होगी, मतलब दोनों वाई से वर्षा। चलिए अभी फिलहाल इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और गाना चलाता हूँ आप लोगों के लिए। डिवाइन की आवाज़ में सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाली बर के नड़ा।

क्या आपके पास भी फोन आता दिन में कि सर मैं इस बैंक से बोल रही हूँ या इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है क्या? और जब आप मना कर दोगे तो फिर उसके बाद बोलेंगे सर लेके देखिए आपके लिए ये चीज़ फ्री हो जाएगी, वो चीज़ फ्री हो जाएगी, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। मगर वो लाइफ टाइम फ्री नहीं होता ब्रो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। जब मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था ना, मेरे खर्चे भी कम थे। अब क्रेडिट कार्ड आने के बाद अचानक से मेरे खर्चे डबल हो गए हैं एंड आई डोंट नो व्हाई। अब क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं कुछ लोग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात कर रहा था। तो एक्चुअली में ये हो रहा है, लोगों ने इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स ले लिए हैं कि उनके पास एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उन्होंने अपना सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। ये बात सबको माननी पड़ेगी। एंड ये क्रेडिट कार्ड का जो ये ट्रैप है ना, ये सबसे

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: वाह वाह,
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आ तो चली।

You got what I wanted, Sony, yeah.

क्या आपको लगता है कि इंडियन वर्क कल्चर टॉक्सिक है? क्या आपको लगता है कि आपके ऑफिस में जो भी लोग बैठे हैं वो लोग टॉक्सिक हैं? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड हम सभी कहीं ना कहीं काम करने चाहते हैं। हो सकता है आपका अपना बिजनेस हो, बट बिजनेस में भी ऐसा होता है कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, ये हो सकता है वो हमारे पार्टनर्स हो सकता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकता है वो लोग भी टॉक्सिक हो। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे इंडियन वर्क कल्चर के बारे में। देखो, यहाँ ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लीडर और एक होता है फॉलोअर, और एक होता है लीडर और दूसरा होता है बॉस, हुक्म का इक्का बॉस। बॉस हुक्म का इक्का नहीं, बॉस वो होता है जो सिर्फ अपनी ही चलाना जानता है। वो बोलता है मैंने ये बोल दिया तो ये चीज़ होनी ही चाहिए, मगर जो लीडर होता है ना वो सबको साथ में लेके चलता है। वो बोलता है कि हम मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। तो आप लोग बताइए कि आपके जो सीनियर है ऑफिस में, अपने आप को बताइए ये बात, क्योंकि इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ मैं। तो आपके जो सीनियर है आपके ऑफिस में, क्या वो सबको मिलकर एक साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, या फिर बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो, और सबको काम देके खुद से आराम से बैठ जाते हैं? और इंडियन वर्क कल्चर की अगर बात करें तो हर ऑफिस में एक इंसान तो ऐसा ज़रूर होता है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ काम करने का नाटक करता है, जो दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट आपको बताऊँ असली प्रमोशन उसका ही होता है। चक्रम कहते हैं इनको। हमने भी सुनी होगी वो वीडियो, आपने भी देखी होगी वो वीडियो, जब हमारी जो पूर्व मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने बताया था कि हर ऑफिस में एक चक्रम ज़रूर होता है जो काम करने का नाटक बहुत करता है, और असलियत में प्रमोशन उन्हीं का होता है। असलियत में प्रमोशन उनका इसलिए होता है क्योंकि वो दिखाते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, असलियत में उन्होंने कुछ नहीं किया होता। और ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम बहुत करते हैं मगर दिखाते कुछ नहीं है। तो आप लोग कौन से वाले हैं, सोचिए इसके बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर करते हैं इंडियन वर्क कल्चर के बारे में और भी बात।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: ईशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

एक NRI लेडी का ना वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रही है कि इंडिया के वर्क कल्चर में, वर्क प्लेस में 6 चीजें तो कॉमन है। क्या है वो चीजें, बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। रिहाई ये गाना था पैराडॉक्स की आवाज में, और जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ, ये लेडी ने वीडियो बनाई है, NRI है, वो कह रही है इंडियन ऑफिस में वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप किसी इफेक्टिव पोजीशन पे नहीं हो ना, एक अच्छी पोजीशन पे नहीं हो, तो अगर कोई मीटिंग है तो वो कभी भी कैंसिल हो सकती है। अगर आप जूनियर हो तो वो मीटिंग कभी भी कैंसिल हो जाएगी, आपके टाइम को तवज्जो नहीं दी जाएगी। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर नहीं हो तो। और दूसरी चीज़ आती है चापलूसी। चापलूसी तो आम बात है, सबके ऑफिस में होती है। कोई ना कोई ऐसा होता है जो मैनेजर का फेवरेट होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा बॉस के पीछे पीछे पीछे पीछे चलता रहता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि ऐसे इंसान को ढूंढा जाता है ऑफिस में जो हर काम के लिए हाँ बोल दे। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग भी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते, बट हमें पता है कि हाँ हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो हायरर्स होते हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो हर काम के लिए हाँ बोल दे। और अगर काम धीरे धीरे करते हैं तो उसको टाल दिया जाता है, हमेशा ऐसे ही किया जाता है। ये इंडियन वर्क कल्चर की बातें हो रही हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई जो ज़रूरी बात नहीं होती ना, वो कोई नोट ही नहीं करता। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी बात हो तो उसको तो नज़रअंदाज कर देते हैं हमारे सीनियर्स। और फीडबैक तो कोई भी स्वीकार करता ही नहीं है इंडिया में, मानते हो कि नहीं। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना ये बातें फरीदाबाद की पब्लिक से शेयर की जाए, क्या वो भी सहमत है इन बातों से। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, केके की आवाज में गाना चला रहा हूँ। वापस आकर और भी ढेरों बातें करनी है रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।
5: My like it, awesome.

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपकी सैलरी मंथ एंड तक टिक जाती है या फिर नहीं? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अच्छी सैलरी होती है काफ़ी सारे लोगों की, मगर क्या होता है, मंथ एंड आते आते उनकी जेब में पैसे ही खत्म हो जाते हैं। और इसकी वजह देखो सिंपल सी है, सिंपल सी वजह है कि आपकी जो कमाई हो तो ठीक है, बट आपकी जो इनकम और आपके जो खर्चे हैं ना, इसके बीच में आपका अंतर ही नहीं है कोई। मतलब समझते हैं कि आपकी सैलरी आ रही 50,000 rupees पर मंथ, जस्ट इमेजिन, और हो सकता है 1,00,000 rupees महीना आ रही हो और आपके खर्चे भी 90,000, 95,000, 99,000 rupees हैं, तो फिर सैलरी टिकेगी कैसे? देखो लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देख के करिए कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने शेयर करी थी एक पोस्ट में, तो वो पोस्ट मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना सबको शेयर किया जाए। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग सैलरी आती है कोई बजट बनाते नहीं है, जहाँ तहाँ खर्चा करते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ये वो, कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को खर्चे डिवाइड करने पड़ेंगे। और देखो बजट हमेशा इन हैंड सैलरी के आधार पर ही बनाना चाहिए आपको। खर्च से पहले आपको सबसे पहले अपनी सेविंग्स रखनी है, उससे के बाद आपको रखना है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको जो पैसे बचे हैं उनको आपको खर्च करना है। बट काफ़ी सारे लोगों का ऐसा होता है कि सैलरी आते ही पैसे कट जाते हैं EMI के या फिर किसी और चीज़ के। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी तो करनी होती है ना दोस्त, तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए आप लोग। वापस आकर बात करते हैं उस इंडियन इंजीनियर की जिसने AI टूल की मदद से 25,00,000 rupees कमा दिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से। कैसे किया ये कमाल, करेंगे इसके बारे में बात लेकिन इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर फरीदाबाद की लड़की की आवाज़ में ये गाना आप सभी के लिए।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: टैलेंट हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडियन इंजीनियर वीरेंद्र सूर्यवंशी। एक्चुअली में इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से 25 लाख रुपए कमा दिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एआई टूल का इस्तेमाल करके। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और इस लड़के ने एंथ्रोपिक के एआई टूल, एक एआई टूल है फेबल 5, उसकी मदद से एक ही प्रोजेक्ट से 25 लाख रुपए कमा दिए। और अमेरिका चर्च मीडिया एजेंसी है, वहाँ पर उनको कुछ चाहिए था, उनको सीआरएम में कुछ तैयारी करवानी थी और इन्होंने तुरंत एंट्री मारी। इन्होंने बोला देखो मैं तैयार करके देता हूँ, और इन्होंने कंपनी ब्रेन की सहायता से एक पूरा का पूरा संगठन तैयार किया और सारे के सारे सिस्टम को जोड़कर पूरा का पूरा काम एक ही बार में पूरा कर दिया। लाइक अमेरिकन्स वर आल्सो शॉक्ड कि इतनी इजीली इन्होंने कैसे कर दिया। और इस लड़के की कहानी अभी हर जगह बताई जा रही है और सबको इंस्पायर कर रही है कि हाँ आप लोग भी अपने टैलेंट और अपने हिम्मत और अपने कहते हैं ना IQ के बल पर आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बस ये स्टोरी शेयर करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि जितने भी यंगस्टर्स मुझे अभी सुन रहे हैं, आप लोग कभी भी किसी भी और के कहने पर ब्रेन वॉश मत होइए। आप लोग अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए और काम पर उसे लगाइए। और देखो आज के टाइम पर आपके पास लाखों टूल्स पड़े हैं, आपके पास AI है, आपके पास इंटरनेट है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए और कुछ नया इनोवेट कीजिए और इंडिया को और भी बेहतर बनाइए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर और भी ढेरों बातें करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में हम सबके पास प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। कैसे होंगे वो प्लास्टिक के नोट, करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर ला रहे ये गाना मनिंदर बट्टर की आवाज में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: मैं सब कुछ छोड़ देता तेरे कल के, तेरे उतो सब कुछ वारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: what God made.
1: मैं नहीं लोकी सारे मेरे नाल ही कहना चाहे दोहराए. Every time I look into the mirror I say thank you God.

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

क्या आपके जेब में रखे हुए नोट भी जल्दी फट जाते हैं? क्योंकि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट और इवन 50 रुपए का नोट बहुत जल्दी फट जाता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जब से ये नए वाले नोट आए ना, छोटे वाले, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो वॉलेट थे, आप लोग नए वॉलेट खरीदोगे ना तो उसमें फिट आएंगे बिल्कुल ये, बट आप जब उस वॉलेट में पुराने वाले नोट डालोगे, पुराना 50 का नोट या फिर पुराना 1000 का, 1000 तो नहीं माफ कीजिए तो बैन हो चुका है, 100 रुपये का नोट डालोगे ना तो आप लोगों के वॉलेट में वो फिट नहीं आएंगे। खैर, अब नोट की बात आ ही गई है तो मैं आप सभी को बता दूं कि जल्दी ही मार्केट में आने वाली है कुछ ऐसी चीज़ जिसे कहते हैं प्लास्टिक का नोट। ना तो वो फटेगा, ना ही वो गीला होगा। अगर आपकी जेब में रख के आपकी मम्मी ने वॉशिंग मशीन चला भी दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लास्टिक के नोट जल्दी ही आने वाले हैं और इसको लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। तो टेंडर तो जारी हो गया है और जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद सबसे पहले तो इसकी फ़ोटो आएगी, फिर उसके बाद लोगों में होड़ मच जाएगी कि कौन इसको पहले लेगा, कौन इसको पहले लेगा। तो मैं सबको बता दूं, नोट सिंपल वैसे ही होंगे जैसे कि हमारे अभी नोट चल रहे हैं, बट वो फिर पेपर के नहीं होंगे, प्लास्टिक के होंगे। और अगर आपको लगता है वो प्लास्टिक के नोट मुड़ेंगे नहीं तो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही लाइट प्लास्टिक का होगा। एंड ये एक अच्छा कदम भी है क्योंकि देखो, हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की बात कर रहे थे ना, और नोट जब प्लास्टिक में आ जाएगा तो फिर उसको तो रेगुलर यूज़ करते रहेंगे, उसको कौन फेंकने वाला है, कोई भी नहीं फेंकेगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और आप लोग अपनी अपनी राय भी दे सकते हैं। इस पे नंबर है मेरा 9654896896, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं रेडियो महारानी के नाम से। और अभी आप सभी के लिए केसरिया, ये गाना फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

क्या आपके घर के आसपास भी पानी जमा हुआ आज या फिर नहीं? सच सच बताना, बिल्कुल सच, नो झूठ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। शाम हो चुकी है, अंधेरा भी कुछ ही देर में हो जाएगा, 7:30 से ऊपर हो चुके हैं, 7:43 टू बी एग्जैक्ट। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अभी ना मैं भैया बात करना चाहता हूं वाटर लॉगिंग के बारे में, यानी कि जल भराव के बारे में। फरीदाबाद में काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहां पर पानी जमा हो जाता है। अगर आपके घर के आसपास भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ उसकी कंप्लेंट डालिए। कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं? देखो, MCF की ऐप है, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर न्यूज़पेपर आता है घर में तो उसमें देखिए, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी लिखा आता है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप लोग इंस्टाग्राम पर उन्हें टैग कीजिए, आप लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है उस पर भी उन्हें टैग कीजिए और बताइए कि हाँ, आपके घर के पास वाटर लॉगिंग हो रही है और फिर उसके बाद समाधान किया जाएगा। एंड समाधान की बात करें तो एक और चीज़ है, जैसे कि टूटी सड़कें, तो टूटी सड़कों पर कार्यवाही हो रही थी, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना लेट हो गए कार्रवाई करने में। जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ मेवला महाराजपुर अंडरपास से जब सेक्टर 45 की तरफ आते हैं तो वहाँ पर अभी सीमेंटेड रोड बनने का कार्य शुरू हो चुका है, जो कि अभी हाल ही 10 दिन पहले शुरू हुआ था एंड बारिश फिर से आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉनसून से पहले हो जाना चाहिए था। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, बट ठीक है, एटलीस्ट हो तो रही है। तो इसके बारे में आप लोगों की कोई ना कोई राय ज़रूर होगी, आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर स्टेविन मैन की आवाज़ में ये गाना रेडियो महारानी पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

पास आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

जस्ट इमेजिन कि आप लोग अपने घर से निकले हो, बहुत तेज बारिश हो रही है और अचानक से आपकी गाड़ी खराब हो जाए। नहीं, ऐसी चीजें इमेजिन करने में भी कितना बुरा लगता है ना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। रिचा जी का मैसेज आया है मेरे पास और वो यही कह रही हैं कि आज सुबह सुबह गाड़ी से निकली थी एंड जाम लगा और साथ ही साथ गाड़ी भी बंद हो गई। एंड उनकी गाड़ी क्यों बंद हुई इनको कोई रीज़न पता नहीं चला, बट कह रही हैं सुबह से दिन ख़राब था। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि आपका दिन ख़राब हुआ, बट मैंने कोशिश करी कि अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छा दिन आपका बनाऊं और मैंने खूब सारे गाने भी चलाए। मगर अभी आप लोगों का दिन और भी बेहतरीन बनाने के लिए आने वाली है गीत विदेश कुबाजिया, खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर एंड प्यार भरे गाने लेकर एंड प्यार भरी स्टोरीज लेकर आ रही है गीत। तो सुनना मत भूलिएगा इश्क बाजिया विद आरजे गीत रेडियो महारानी 89.6 पर। एंड इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 8। ऐसी करते करते टाइम बीतता जा रहा है, बहुत जल्दी से अगस्त भी आने वाला है, 8वां महीना साल का। सोचिए टाइम कितनी तेजी से बीत रहा है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से कल शाम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए क्योंकि मौसम बदल रहा है। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: देखे नूर सादा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हूँ इश्क वाली गीत

गाने में अलग सा सुकून है। रात के 8 बज चुके हैं और अब वक्त है दिल की वो बातें सुनने का जो दिन भर की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट गई हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। लेकर आ गई हूँ मोहब्बत, तन्हाई और कुछ वो अल्फाज जो सीधा दिल से उतरते हैं। और आज की रात इश्क शायराना में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे शायर के बारे में जिनकी हर एक लाइन एक एहसास है, हर शेर में एक सच्चाई है। तो आपको जल्दी ही रूबरू कराऊंगी इन शायर से। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था कि जो हमारा खास सेगमेंट है इश्क शायराना में, इसमें बात करने वाले हैं हम एक ऐसे शायर के बारे में जिनकी शायरी इश्क का आईना भी है और जिंदगी का बयान भी। नाम है इनका आरजू लखनवी। ये वो शायर हैं जिसने मोहब्बत को सिर्फ चाहा नहीं, उसे शिद्दत से जिया और फिर उसे शब्दों में बदल दिया। और पहला ही शेर बहुत खूबसूरत है, आंख से दिल में आने वाला, दिल से नहीं अब जाने वाला। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई आया, उसे एक बार देखा और वो नजर कहीं दिल में उतर गई। शायद आप इसको कहेंगे पहली नजर की मोहब्बत। कुछ लोग इतनी गहराई से हमें छू जाते हैं कि उनकी मौजूदगी भी हमें महसूस होती है। आरजू साहब का ये शेर सिर्फ इश्क नहीं, अटैचमेंट की कहानी भी है। उस लगाव की जो आंखों से शुरू होकर दिल के किसी कोने में पहुंच जाता है, जहां से फिर कभी वापसी नहीं होने वाली। मतलब भाई, अगर इश्क हो गया ना उस इंसान से, तो ये इश्क बहुत लंबा चलेगा। लेकिन हर मोहब्बत का अंजाम तो हमेशा मिलना नहीं होता, ये तो है ही। कभी वो दर्द में ढलती है और कभी किसी अधूरी मुस्कान में। और आगे कहते हैं, घर को फूंक के जाने वाला, फिर कहीं नहीं आने वाला। कितना गहरा है ये शेर। कुछ लोग ऐसे रिश्तों में होते हैं जो हमारे अंदर की पूरी दुनिया बदल जाते हैं। वो जाते हैं मगर अपने साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ, यानी कि हमारा सुकून, हमारी मासूमियत सब ले जाते हैं और एक अलग सा खालीपन छोड़ जाते हैं जिसमें हम धीरे धीरे ढलते हैं, लेकिन बहुत वक्त लगता है। अभी वक्त है यहाँ पर गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो।
0: बाय।

कभी कभी बस ऐसे ही कोई इंसान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है ये इश्क शायराना, जहाँ हम हर रोज एक शायर के बारे में बात करते हैं, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी नज्म जो हमारी जिंदगी से बहुत कनेक्ट होती है। अभी आगे लिखते हैं, दोस्त है तो नादान लेकिन बेसमझे समझाने वाला। कभी कभी कोई रिश्ता हमें बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो हमें शायद सच दिखाना चाहता है, वो दोस्त जो हमारे झूठे सुकून को तोड़ देता है और हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे हम भागते हैं, हम डरते हैं कि इतना सच सुनने की तो शायद कभी से आदत नहीं थी। वही नादान दोस्त, वही सच्ची मोहब्बत जो हमारी आंखों से आंसू भी पोंछता है और दिल में आग भी लगा देता है। और आगे लिखते हैं, ये आंसू पोंछ के हंस देता है आग में आग लगाने वाला। सुनने में ये शेर एक अफसाना लगता है, मगर असल में ये जिंदगी है। जिंदगी भी हमें कभी हंसाती है, कभी जलाती है, और हर बार हमें थोड़ा और सिखा जाती है। ऐसे ही जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो शायद हमें थोड़े से तीखे लगते हैं, थोड़े से कड़वे लगते हैं, अक्सर उनकी बातें हमें चुप जाया करती हैं, क्योंकि वही ये लोग होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। दरअसल हम उन्हीं लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो सिर्फ हमारी तारीफें करते हैं, जो सिर्फ हमें हर जगह अच्छा ही बताते हैं, लेकिन ये लोग हमें सिखा नहीं पाते हैं। लेकिन जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, भले ही कुछ कड़वा कहकर सिखाएं। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं लेकिन सीधा और सटीक बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये लोग वही हैं जो अंत तक आपके साथ होंगे। और यकीनन एक दिन जब आप उस कामयाबी तक पहुंचेंगे तो यही वो लोग होंगे जो आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत। आरजू लखनवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं।

0: चरण पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

तू सो जाए।

इसी खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और हम बात कर रहे हैं आरजू लखनवी साहब के बारे में। इनकी बहुत ही खूबसूरत नज्म है जो जिंदगी से बहुत कनेक्ट होती है। अभी आगे लिख रहे हैं, डाल रहा है काम में मुश्किल, मुश्किल में काम आने वाला। कितनी गहरी बात कह दी है और वो भी चंद ही शब्दों में। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ हमें लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स हो, कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस हो, जब लगता है कि अब हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो वक्त नहीं जो हमें गिरा दे, बल्कि वो पल है जो हमें पहचान देता है। कभी कभी इश्क हमें तोड़ता नहीं, बल्कि वो हमें हमसे मिलवा देता है। और आगे आरजू साहब लिखते हैं, ख्वाब के पर्दे में आता है सोता पाके जगाने वाला। हम सबके पास वो एक इंसान होता है जो हमारे सपनों में आता है, मगर असल में जिंदगी में हमें वही नजर आता है जो हमें याद तो रहता है लेकिन हम उसे बुला नहीं सकते हैं। वो एहसास ही शायद सबसे सच्चा इश्क होता है, वो जो ना मिला मगर हमेशा दिल में जिंदा रहा। और फिर आगे लिखते हैं, एक दिन पर्दा खुद उल्टेगा छुप छुप के तरसाने वाला। शायद हर किसी के अंदर एक इंतजार होता है कि जो हमें छोड़ गया है वो एक दिन लौट कर आएगा और हमें सब कुछ समझा देगा। शायद नहीं भी लौटे, लेकिन उस इंतजार ने ही हमें इंसान बनाया है, क्योंकि उसके जाने के बाद ही हमने सोचा है कि हमारे अंदर ऐसी क्या खामियां थी कि जिसकी वजह से वो हमें छोड़ के चला गया। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, मोहब्बत महसूस करने का नाम है। और आरजू साहब की नज्म हमें सिखाती है कि हर जुदाई में, हर अधूरे पल में एक इश्क शायराना छिपा है। तो अगर आज किसी की याद ने तुम्हें बेचैन किया हो, अगर कोई ख्वाब बार बार लौट कर आ रहा हो, तो उसे भगाओ मत, उसे महसूस करो, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक खूबसूरत कहानी की और यहीं से शुरू होता है इश्क शायराना। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कुछ गाने यकीनन हमें बीते वक्त से रूबरू करा देते हैं, जैसे लकी अली का ये गाना। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत। अब वक्त देखो, रात का वो हिस्सा आ गया है जब शोर कम पड़ जाता है और खामोशियां बोलने लगती हैं, जब शहर की हर बत्ती थोड़ी सी धुंधली हो जाती है लेकिन यादें और ज्यादा साफ हो जाती हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सुबह की जितनी भी थकान है वो खत्म हो जाती है और हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। ये है रात का वक्त और यही वक्त है इश्क बाजियां की बहुत सारी बातों का जो सीधा आपके दिल तक पहुंचती हैं। तो अब हमारा ये जो खास सा सेगमेंट है इश्क शायराना, ये यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, अगला सेगमेंट शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहाँ एक खूबसूरत सी लव स्टोरी से आपको रूबरू कराऊंगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता और कुछ रिश्तों की टूटने की कोई वजह नहीं होती। कभी कभी एक सिंपल हैंडशेक भी एक कहानी बन जाता है, एक आखिरी कहानी। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, द लास्ट हैंडशेक। हम दोनों एक भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर मिले थे। वक्त की तरह लोग तेज चल रहे थे पर हम एक जगह रुक गए थे। वो मेरी जिंदगी के सबसे अजीब मुसाफिर जैसे, ना पूरी तरह अपना ना बिल्कुल अजनबी। कुछ पल बातें हुई, कुछ मुस्कुराहटें बनती गई। क्या था हम दोनों के बीच? दोस्ती, शायद थोड़ा सा प्यार भी, पर बिना इजहार के। कुछ रिश्ते ना तो जरूरत बन पाते हैं ना आदत, बस एक याद बनकर रह जाते हैं। उस दिन उसका जाना जरूरी था और मेरा रुक जाना भी। ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, बस एक हाथ बढ़ाया, एक सिंपल हैंडशेक, जैसे उसका हाथ मेरे हाथों में ही रह गया हो, जैसे उन उंगलियों ने दिल की लकीरें ढूंढ ली हों। उस हाथ में एक ठंडी सी तसल्ली थी और गर्म सी उलझन। क्या कहना चाहते थे, क्या सुनना चाहते थे, पता नहीं। वो हाथ छूट गया, वो मुस्कुराहट दूर हो गई, बस एक याद रह गई उस आखिरी हैंडशेक की। अजीब बात है ना, एक लम्हा, एक हाथ मिला और जिंदगी भर का एक खालीपन दे गया। अब सोचता हूं, क्या वो हाथ पकड़ के रख लेता तो कहानी अलग होती, या शायद कुछ कहानियां बस एक हैंडशेक तक ही लिखी जाती हैं।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

अगर जिंदगी में कोई साथ निभाने वाला ऐसा मिल जाए तो यकीनन जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और फाइनली सेगमेंट शुरू हो गया है रेट्रो इश्क, जहां एक बहुत ही खूबसूरत सी लव स्टोरी मैं लेकर आती हूँ। आज भी एक ऐसी खास प्रेम की कहानी लेकर आई हूँ। ऑल्दो ये प्रेम की कहानी जो है इसको मंजिल नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस प्रेम की कहानी का रास्ता बहुत खूबसूरत था। कहते हैं कि फिल्में जितनी दिलचस्प होती हैं, उतनी ही दिलचस्प होती है फिल्मों में काम करने वाले स्टार्स की लाइफ। हम ऐसा सोचते हैं, उनकी जिंदगी में भी एक ऐसे मोड़ आते हैं जहां वो भी हताश होते हैं, जहां उनकी प्यार की कहानियां बनती हैं। और ऐसी ही ये प्यार की कहानियां थी गुजरे जमाने की बहुत ही बेहतरीन सिंगर और एक बहुत ही लेजेंड एक्टर की। तो इन दोनों की प्यार की कहानी बहुत खास थी। वैसे वन साइडेड लव स्टोरी है ये, डेफिनेटली इस प्यार की कहानी से आपको रूबरू जरूर कराऊंगी। लेकिन फिलहाल सुनते हैं हम इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके पर।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: तो हम चलते हैं।
5: अच्छा,
4: तो हम चलते हैं।
5: तो हम

वैसे मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि अभी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सेगमेंट है रेट्रो इश्क और शो है इश्क बाजियां, और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। रेट्रो इश्क में आज की प्यार की कहानी है गुजरे जमाने की बहुत ही फेमस सिंगर सुलक्षणा पंडित की और एक बहुत ही लेजेंड एक्टर संजीव कुमार की। इनकी जिंदगी बिल्कुल फिल्म की तरह ही रही। जैसे मैंने कहा कि ये लव स्टोरी थी वन साइडेड, जहां सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से एक तरफा मोहब्बत करती। सुलक्षणा उस टाइम बहुत ही फेमस गायिका थी। इन्होंने 1970 के दशक में कई हिट गानों में अपनी आवाज दी और 1975 में संजीव कुमार के साथ फिल्म उलझन से इन्होंने बतौर एक्टर शुरुआत की। फिल्म का नाम उलझन और फिल्म थी सस्पेंस थ्रिलर। फिल्म का निर्देशन किया रघुनाथ झलानी ने। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ने संजीव कुमार से मोहब्बत हो जाती है। हालांकि ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी, और कई बार हमें मालूम नहीं होता, हम मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन इसके पीछे के अंजाम हमें मालूम नहीं होते, और ऐसा ही हुआ सुलक्षणा पंडित के साथ। और क्या ही कहानी थी ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले?
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो
0: बाय।

गाना है फिल्म यादों की बारात से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और यहां पर आज की लव स्टोरी है सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की, जहां फिल्म उलझन के सेट के दौरान इनको मोहब्बत हो जाती है संजीव कुमार से और ऐसा कहा जाता है कि सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार के प्यार में इस कदर पागल थी कि ऑन सेट इनके लिए घर से खाना बनाकर ले जाया करती और उनके साथ बहुत ही टाइम स्पेंड किया करती। ये अपने दिल की बात कहना चाहती थी संजीव कुमार से, लेकिन जब इन्हें मालूम पड़ता है कि बात कुछ और ही है तो ये थोड़ी सी उस टाइम निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं और गुमनाम हो जाती हैं। जहां उस दौरान ये काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी, क्या थी वो कहानी ये आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। गाना बहुत खूबसूरत है और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। रेट्रो इश्क में आज की प्यार की कहानी है सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की। वैसे ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी, जहां सुलक्षणा ही मोहब्बत किया करती उनसे, मन ही मन चाहा था, घर से खाना बनाकर ले जाया करती। उस दौरान सेट था 1975 में आई फिल्म उलझन का, ये सस्पेंस फिल्म थी, और उस दौरान संजीव कुमार किसी और से मोहब्बत किया करते। इधर संजीव कुमार किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और सुलक्षणा जो थी वो संजीव कुमार से मन ही मन प्यार किया करती। जहां सुलक्षणा को पता चलता है कि संजीव कुमार किसी और से मोहब्बत करते हैं तो उस दौरान ये थोड़ी सी हताश हो जाती हैं, लेकिन दो बार संजीव कुमार को अपने मोहब्बत में ठुकरा दिया जाता है, तो इसके बाद सुलक्षणा को एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि हो सकता है कि इसके बाद संजीव कुमार उनके पास लौट आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। वो महज इंतजार करती रह जाती हैं और वक्त ऐसे ही बीत जाता है। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके, और आज रेट्रो इश्क में प्यार की कहानी है संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित की। ऑल्दो ये प्यार की कहानी वन साइडेड रही, ये प्यार की कहानी कभी भी पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रही, क्योंकि मोहब्बत एक तरफा जो थी। संजीव कुमार ने कभी नहीं समझा सुलक्षणा के प्यार को, वो कोशिश करती रही, उम्मीद की किरण भी नजर आई और उसके बाद भी उन्हें असफलता मिली अपने प्यार में। और ये मोहब्बत की कहानी ऐसे ही अधूरी रही और ये एकदम से गायब भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ फिल्में की, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, शशि कपूर और यहाँ तक कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। तो ये वन साइडेड लव स्टोरी थी सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की, जो कि अधूरी रही। और अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। खैर चलिए इन बातों को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। और जैसे कि इश्क बाजियां शो है, इश्क मोहब्बत की बातें होती रहती हैं, और आज भी एक बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर 9654896896 नंबर है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम रेडियो महारानी के नाम से मिल जाते हैं। तो पूछिए अपने सवाल और मैं आपको सुनाती हूँ तब तक एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।

रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। और देखिए, मैं कह रही थी ना, एक बहुत ही खास और एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ, तो अब मैं बिना देरी किए सीधा बढ़ती हूँ इस टॉपिक पर। वैसे कहते हैं ना कि किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। आपने बहुत बार ये जो बात है वो सुनी होगी और कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी भी होगी। हालांकि ये पढ़ने और सुनने में जितना ईजी है, आसान है, असल जिंदगी में उतना आसान नहीं होता। आजकल तो ये जो जिंदगी है ना, वो इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है, शायद हम अपने आप पर तो ध्यान दे ही नहीं पाते, तो रिश्तों पर कहाँ ध्यान देंगे। शायद हम अपने करियर के बीच, अपने ख्वाहिशों के बीच इतने ज्यादा खो गए हैं कि हम समय देना भूल गए हैं, किसी और को नहीं बल्कि खुद को। आप सोचिए कि आपने लास्ट बार कब अपने आप को समय दिया था, कब अपने आप से ढेरों बात करी थी, कब अपने आप को सुकून के पलों में खो दिया था। शायद आपको याद भी ना आए, क्योंकि कहा ना कि हम खुद से प्यार करना, खुद को समय देना बिल्कुल ही भूल गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए किसी और से प्यार करने से पहले आप खुद से प्यार करें। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उनको फेस करने से घबराएंगे नहीं। आप में जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी बिल्डअप हो जाएगा और आप दूसरों को भी समझने लगेंगे। एक बार आप खुद को तो समझ के देखिए। और जैसे किसी ने इस बात पर कितना खूबसूरत लिखा है ना, अरे आप मुझसे मिलने आए हैं, चलिए मैं खुद को बुलाकर लाता हूँ। तो आप सबसे पहले किसी और से मिलने की बजाय खुद से मिलिए, खुद से बातें कीजिए, अपने इमोशंस को समझिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। और अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है, तो अपने आप को बेहतर बनाइए। और आज इसी बारे में बात होंगी, यानी कि सेल्फ लव, जो हम सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लव योर सेल्फ, कहते हैं ना कि लव योर जिंदगी, तो अपनी जिंदगी से सबसे पहले प्यार करना बहुत जरूरी है। इसी बारे में बातें होंगी, अभी वक्त गाने का है और चलिए बिना देरी किए सुनते हैं इस गाने को। रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

उसी गाने के साथ फिर से स्वागत है और मैं हूँ इश्क वाली गीत शो इश्क बाजियाँ। और बातें चल रही हैं लव योरसेल्फ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले एक और सवाल आता है कि आखिर खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है। खुद से प्यार करना सबसे पहले इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो खूबसूरत हो जाए। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो फिजिकल तौर पर भी बहुत हेल्दी रहते हैं, उनको जो टेंशन्स हैं वो आसानी से नहीं हो जाया करती हैं। वो अपने काम पर फोकस करते हैं, अपनी हेल्थ पर फोकस करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। तो अपने आप को जब आप पॉजिटिव फील कराओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी दूर रहेंगी। अगर है भी तो शायद वो आपसे मिलने में घबराएंगी, आप उनको आसानी से फेस कर लोगे। तो अगर आप खुद से प्यार करते हैं आपकी पर्सनल आपकी प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर इसका असर पड़ता है। हाँ, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लेवल बढ़ता है। इसीलिए अगर आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी बनना है तो खुद से प्यार करना होगा, और रिश्तों को भी खास बनाना है तो भी आपको खुद से प्यार करना होगा। अब देखिए मैंने ये बात क्यों कही है, बहुत आसान सी बात है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना तब तक आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। जब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप किसी और को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब खुद से प्यार करने की बारी आए तो आप पीछे ना हटें, खुद से प्यार करें। और अब लोग कहेंगे कि क्या क्या तरीके हैं खुद को पॉजिटिव फील कराने के, ये मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। लेकिन अभी वक्त गाने का है, रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

कभी कभी ये दूरियां बहुत जरूरी होती हैं। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, लव योरसेल्फ आज का टॉपिक है इश्क बाजियां में। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे, आई रिपीट। एंड सबसे पहले अगर खुद से प्यार करने की बारी आए तो आप अपने आप की देखभाल करिए। खुद से प्यार आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद की सही देखभाल कर पाएंगे, जैसे ठीक तरह से नींद लेना। आजकल ये जो जिंदगी है वो इतनी फास्ट हो गई है कि हम अपने सपनों के पीछे इस कदर पड़े हुए हैं कि शायद ढंग से आराम से जो सुकून की नींद है ना वो नहीं ले पाते। और लाइफस्टाइल को तो इस कदर बिगाड़ दिया है कि हम ना सही खाना खाते हैं, आसपास के लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, क्या मन में चल रहा है ये दूसरों को बताने से कतराते हैं। तभी तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं, जो एंजाइटी है लोगों में, क्योंकि हम अपने मन की बात खुद तक पहुंचाने में ही इतनी देर कर देते हैं कि दूसरों तक जब वो पहुंचती है तो शायद कुछ और वक्त ही आ चुका होता है। इसीलिए जो भी हेल्दी चीजें हैं ना उनको अपनी आदत बना लीजिए, अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाइए। जिंदगी में कई चीजें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन एक बार अगर आपको खुद से प्यार हो गया ना तो कोई जाए या आपके पास रहे आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाइए। मेडिटेशन आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी और इस तरह से आप खुद को अच्छा फील करा सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, चलिए सुनते हैं इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और आज का टॉपिक है लव योरसेल्फ, जो बहुत ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना। और देखिए काफ़ी सारी बातें हो गई हैं इस टॉपिक को लेकर, लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। और अभी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे चलने का वक्त हो चला है। मैं मिलूंगी आपसे कल। अगर कुछ बातें अधूरी रह गई हैं तो कल उन बातों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर मैं
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
0: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या
1: क्या पूछा?

0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।
3: मस्त बहा।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरुण सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मैं

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: gonna save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझे

आपको याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब मां की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहां सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
1: 89.6 FM
3: कुछ हटके।

0: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने मांगा

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ वो पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो स्टाइल।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूं भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करें

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। यही ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की धारा, काढ़ दया कर कर्म ही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की, कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो